नानक दे दर ते छिदक दे नाल आया है या सतगुरु नानक तेरिया मुरादा पूरिया करन गए ते भाई साहब गुरदास जी ए नजारा अखी वेख रहे सन ते आप लिखदे हन पाव

इस इलाके दे दसवंध लई ए सेवा इसनू दिती होई छे। और भाई फगू जी बड़े सिदक और प्यार वाले सन, घर घर जाके गुरु के सिखां पासों दसवंध गुरु लई इकट्ठा करना ते फिर आनंदपुर

बहादुर सच्चे पातशाह मेरे घर आके चरण पान। इसने दरवाजा भी अपने घर का इतना बड़ा बनवाया कि गुरु साहब नू घोड़े तो ना उतरना पवे, घोड़े समेत ही मेरे।

अज ए खुशी दी खबर इसनु मिली के सतगुरु थोड़े दिन तक धन गुरु तेग बहादुर साहब आ रहे हैं। ता इसने जिथे जिथे भी कोई गुरु का सिख सी जाके दसवंध लिया गुरु के खजाने विच रख दिता कोई गुरु साहब आनगे ते एक एक दा नाम लेके दसवंत मैं बेटा करांगा गुरु के सिखा दा। सारियां कोलों जो भी किसे भी कुछ श्रद्धा है गुरु दे लिखे दिंदा ए लिया के गुरु के खजाने विच तजोरी विच रख दिंदा। एक माता इसने जाके आख्या भाई कोई गुरु लेके दसवंत देना ही माई कुछ घर की कल्पना करके बड़ी औखी हुई हुई सी झाड़ू दे रही सी आख्या ये कोई दसवंत लैण का समा है आख्या जो कुछ यही भाई दे दे ते जेड़ा भी उस झाड़ू दे नाल कूड़ा कट्ठा किया सी ओ चुक के उसने पाई फगू दी।

गरीबा नू निवाजन वाली सतगुरु मेरे जीवन का मनोरथ ही यही सी कि कदों तू आवे ते मेरे घर घोड़े ते चढ़ के आवे। अज ओ सुभाग शम साहब जी घर आके घोड़े तू उतरे दीवान सजाया सारियां संगतां कठियां होईयां ते एक एक दी पेटा एक एक दा दसवंद ना लै के भाई फगू धन गुरु तेग बहादुर साहब सच्चे पातशाह जी दे चरणा विच अर्पण करन लगा। जदों सारियां पेटावां दे दित्तियां तां भाई फगू मत्था टेक के बैठ गया तां धन गुरु तेग बहादुर सच्चे पातशाह कहन लगे भाई फगू अजे पेटा होर भी है तिजोरी विच। गरीब निवाज सच्चे पातशाह मैं ऐसा कम कदे नहीं कीता जो भी पेटा आउंदी है मैं तो आप दे अर्पण कर देना। मेरा तो तन मन धन जो कुछ भी है आप दा है ते मैं किसे भी पेटा किवें रख लवांगा। नहीं भाई फगू वेख तां सही तेरी तिजोरी विच है किसे दी पेटा। भाई फगू नूं बड़ा शर्म भी आया भाई जितनी संगत बैठी है मैं इन्हां कोलों पेटावां लियांदा हां ते इह की कहणगे भाई शायद भाई फगू विचों दसवंद दे विचों कुछ रख लैंदा पर फिर भी सतगुरां दा वचन मनदिआं होइआं जा तिजोरी विच हाथ मारिया तां ओ जिहड़ी माई ने कूड़ा दिता सी ना ते उहदे विचों एक बेर दी गिटक निकली सी ओ गिटक हाथ विच आ गई। महाराज एक माई ने दिती सी आख्या फिर ए गुरु की भेटा उस माई ने कीती है ते ए प्रफुल्लत होनी चाहीदी है। इस गीतक नूं इत्थे पूर दे ते जदों बेरी बन जाएगी लोक इस नूं प्रसाद समझ के इस बेरां दा प्रसाद छक के निहालो निहाल होया करनगे। तो ओ गुरु दी शरण भाई जे तू सिदक दे नाल प्यार दे नाल कोई भी गुरु दर ते सेवा करे गुरु जीवन मुक्त प्रदान करदा है गुरु जन्म मरण तो रहत कर देंदा है। भाई साहब कहंदे न पावनी भगत पाए कौड़ी अगर भाग राखे ताहे गुरु सर्व निधान दान देते है। जिस माई ने ए पेटा कीती सी ना चरना ते देख पई रो रो के अपने गुनाह बख्शाए ओ सच्चा पातशाह मैनू बख्श ले ए गुरु नानक दा दर है ए अकिरत गणा नू पालन वाला।

अपने दर ते परवान कर दी। ए गुरु नानक दा दर है जिथे प्यारी सात संगत एक तिल मात्र भी सेवा कीती होई व्यर्थ नहीं जांदी। इसे लई पाई शब

एक कौड़ी मेरे पास है। कोई हजूर दे सुंदर दोशाले बेटा करेगा, कोई तान करेगा, कोई सोनल करेगा, कोई कुछ करेगा, ते जदो मैं एक कौड़ी बेटा करांगा क्या मैनू शर्म ना आएगी, लज्जा ना आएगी। पर फिर मन में आवाज आई है गुरु तक गरीब निवाज है, वो तो माया नहीं वेखदा, वो तो सिख का हिरदा वेखदा, प्यार वेखदा, ते ए गुरु का सिख भी इस टोली दे नाल तुर पिया, ते जा सतगुरु दे दरबार पहुंचे। संगतां कीर्तन विच जुड़ियां, कीर्तन तो बाद जदों अपने दसवंद पेटा घर लगियां संगतां, सारियां संगतां दे नाम बोले गए, जितनी जितनी भी किसे ने पेटा कीती सी, गुरु दे दर तो प्रसन्नता प्राप्त हुई। काफी समा काफी टाइम बीत गया, तां गुरु अर्जन देव पातशाह कहन लगे भाई अजे एक ऐसा सिख है जेड़ा सानू पेटा नहीं दे रहा, पेटा रखी बैठा, ये कौन रखी बैठा।

पर मेरे पास है भी तो यही फौजी। ए बेचारा उठता नहीं शर्म दे मारे। लांगरी सिंह आ गया महाराज, लंगर तैयार है, तुसी छकोगे तो संगत भी छकनी। ते आप कृपा करो। धन गुरु अर्जन देव पातशाह कहन लगे, भाई जिन्हां ने पेटा देनी है वह दे। अजे एक सिख ऐसा बैठा जिहड़ा सानू पेटा नहीं दे रहा, ते वह पेटा देवेगा, ते फिर दीवान दी समाप्ति होवेगी, अरदासा होवेगा। साध संगत बोलो श्री वाहिगुरु। गुरु का हुक्म सुन के ए भाई गरीब नेत्रा तो जल आ रहा, नीवियां पाके हौले हौले गुरु के दरबार विच आके सतगुरां दे चरणां ते बह पिया। ओ सच्चा पातशाह, ओ मेरा देसाई, तू अंतर जामनी है, तू घट घट दे जानन हारा है। जिथे एडे राजे महाराजिया दियां

तेरी पेटा लई तो मैं कदों का इंतजार कर रही, तेरी पेटा लई तो मैं इत्थे बैठा हाँ, मैनू तो सिदक दी पेटा चाहिदी है, प्यार दी पेटा चाहिदी है। जे प्यार है तो सब कुछ है, जे सिदक है तो सब कुछ है। धन गुरु अर्जन देव पातशाह जी ने एक सिख जेड़ा एक कौड़ी बेटा लियाया सी, शैव जी ने बड़े प्यार दे नाल एक कौड़ी अपने हाथ विच रखी ते सिख नू नाम दी दात बख्श के जन्म मरण तो रहत कर देता। तो भाई साहब कहदे न पावनी भगत भाए, कौड़ी अगर भाग राखे भाई गुरु ने ता तेरा हिरदा वेखना है, तेरा प्यार वेखना है, तेरी माया नहीं देखनी। वो ता जुगा जुगंतर देना आ रहा है। जे उसने माया वेखनी होवे ता उदे एक अख दे फुलकारे विच एक भिखारी नू चक्रवर्ती पातशाही मिल सकती है। वो तेरी माया दा भुखा नहीं, गोविंद पाओ भगत दा भुखा, तेरे अंदर सिदक है गुरु सदा तेरे ते निहाल है, सदा तेरे ते दयाल है। भाई साहब गुरदास जी कहंदे

राग भीम पलासी, दो राग ए आपस विच बहुत मिलदे ने, धनासरी ते भीम पलासी इको ही सुरा ने इन्हां दियां। सिर्फ केड़ी सुर ते ठहरना है भीम पलासी विच ते धनासरी विच, केड़ी सुर ते इहदा ठहराव है, ठहराव करके ही इस दे राग दा रूप बदल जांदा है। भीम पलासी विच मध्यम ते ज्यादा ठहरना पैंदा है ते धनासरी विच पंचम ते शब्द भी धनासरी राग दा है। जी की एक ही पैमानी अवर जतन कर रहे बो तेरे, तिन तिल नहीं कीमत जानी। तीन ताल विच इसकी बंदस है, अति सुंदर बहुत। सो आप जी श्रवण करो।

गुरु नानक सच्चे पातशाह एक जंगल विचो विचर रहे हैं। अकाल पुरख की कुदरत नूं तकदियां साहब जी मरदाने नूं पुछण लगे, मरदानिया मौत नूं कितनी कु नेड़े समझदा है।

गरीब नवाज दो पैर दिन दे बीत चुके हैं, आने वाले दो पैर पता नहीं वेखांगा कि ना वेखांगा। धन गुरु नानक पातशाह कहन लगे भाई बाला तू भी मौत नू दूर समझदा है, मौत इतनी दूर नहीं है। फिर दोहां ने हाथ जोड़े ओ मेरा दे साईं आप कृपा करो आप दसो मौत नू कितनी को नेड़े समझते हो। ता धन गुरु नानक पातशाह जी ने तनाशरी राग विच शब्द उचारण कीता आख्या हम आदमी हां एक दमी दम आ गया ता आदमी नहीं ते मिट्टी दी तेरी पई है। इतना को ही मनुख दी होंद है के एक गिठ और चार उंगलां श्वास मनुख दा बार आउंदा है, पता नहीं भाई मुड़ेगा के ना मुड़ेगा। ए एक अख दे पलक विच पाना वरत सकदा है, इसलिए गुरु नानक सच्चे पातशाह कहंदे हन भाई इस जल दे बुदबुदे दा कितना कु है जीवन, बस इतना ही है कि मोहलत मौत ना जाना, पल दे विच पता नहीं की हो जाना। इसलिए गुरु नानक सच्चे पातशाह जी ने शब्द उचारण

बहु परपंच कर परधन लियावे। सुत दारा पे आन लुटावे मन मेरे फूले, कपट ना कीजे अंत नवेरा तेरे जी पहले। जेरी पापा दी खटी तू खट रिया है, जिना विच्चों तेरे अनेका रिश्तेदार, बाल बच्चे घर वाली वरसाउंदी है। याद रख ए लेखा उना कोलो नहीं मंगया जाना, अंत नबेड़ा तेरे जी पै लीजे। एदे अमोलक स्वास जो वाहिगुरु ने तैनू बख्शे, तू उना दी कीमत ही ना जान सकिया। जिवें एक कंजूस सारा जीवन कमाई करता रहा, धन इकट्ठा करता रहा, ते मन विच सोचदा है भाई चंगी तरह धन इकट्ठा करके ते फिर मैं इस नूं भोगांगा, फिर सुख मानांगा। सोचदिया सोचदिया अंत समा आ गया। जदों अंत समा आ गया, जमदूता ने आख्या भाई हुण तेरा अंत समा है ते तू साडे नाल चलना। ता कहन लगा मैं बड़ा धन जोड़े है, बड़िया मेहनतां कीतियां हन, बड़े छल कपट करके माया कठी कीती है, मैनू भोग ता लैण दिओ, आ मैनू 24 घंटे दे दिओ, मैं तुहानू 1 करोड़ रुपया दे दिंदा। जमदूता ने कहा एक पल भी नहीं मिल सकता, क्योंकि ए धन उथे चलदा नहीं, तू जिथे गल कर रहे उथे तां नाम दा धन चलदा है। इस कंजूस ने आख्या मैं 5 करोड़ दे दिंदा हां, मैनू कुछ स्वास होर दे। आखिर कहन लगा मैं सारी जीवन दी कमाई जितना भी मैं कमाया है मैं सारा ही दे देंदा हां, मैनू कुछ स्वास उसके बदले दे दियो। ता जमदूता ने कहा ए स्वास तां किसे भी कीमत ते तैनू नहीं प्राप्त होन लगे। ता कहन लगा फिर मेरी एक मंग है कि मेरी कबर ते लिख देना कि मैं सारे जीवन दे पल छिन कमाई विच धन कठे करन विच ला दिते, ते सारे जीवन दी कमाई दे बदले मैनू 1 श्वास भी नहीं मिलिया मुल। इस तो भाव है कि जितने अमोलक श्वास हीरियां लालां तो भी महंगे, मैं जप जप के सफल करने सी मैं व्यर्थ गवा दिते। क्योंकि हम आदमियां एक दमी पता नहीं अखीरला श्वास कदों आवे भाई, जे श्वास दे नाल तू जपया होवेगा ओ श्वास तेरा दरगाह विच कबूल हो जावेगा। इसलिए गुरु नानक सच्चे

0: भेटे साधु के चरण।
1: भगवान राम
2: प्रेरणी की चुग्गी उच पहुंचे भगवान जिना रहा तू आयो ना रहा तू मैं सदके जाऊं। कुछ आदास छाया पीलनी ने त्रेता युग दे मालिक भगवान रामचंद्र जी बैठ गए। महाराज मैं गरीबनी ते बख्शिश कीती है ना? नहीं पीरनी तेरे प्यार तेरी जी पीरनी भुख लगी है आखो श्रीवाल पीरनी डाढ़ी भुख लगी कुछ खिला रब नू बड़ी भुख लगी। बाबा जी कलेरां वाले बाबा जी बाबा नंद सिंह जी महाराज प्राप्ति वाले महापुरुष नाम जप के नाम दी प्राप्ति नाम जपना होर चीज है नाम दी प्राप्ति हो जेड़े परमार्थ दे राह ते तुरे न भाई उन्हां दे भी चरण चुमी है तुरे तां हन जेड़ा तुरया है ओही पहुंचण दी आस रख सकदा है। कदे ना कदे सी ते जेड़ा परमार्थ दे राह ते तुरया ही नहीं है वो पहुंच कि नहीं सकता गली बाती तो पहुंचया नहीं जांदा। भाई गुरदास जी ने लिखे है पूछ तो है पधक से मार्ग ना धरे पग प्रीतम के देश कैसे बातन से जाइए। गल्लां नाल अजकल दी दुनिया गल्लां नाल ज्ञान चाहुंदी है पर भाई महापुरुषां दा कथन है गल्लां नाल ज्ञान नहीं मिलदा। ज्ञान ना गली ढूंढिए कथना करड़ा सार ए तो बड़ी करड़ी मंसल है औखी काटी पर जेड़े तुर पैंदे हन ते करदे हन साईं दे मिलन दे कर्म चंगे फिर उन्होंने प्राप्ति हो जाती है। ज्ञान न गली ढूंढिए कथना करड़ा सार कर्म मिले तो पाइए होर हिकमत हुक्म कर्म कर महापुरुषां दी संगत करके सानू भाई चंगे कर्मां दी प्राप्ति हो जाती है। कहने जी संतां दी महापुरुषां दी संगत कीतियां की मिलदा ते बाबा जी कहंदे सन केड़ी वस्तु नहीं मिलदी आखो श्री वाहिगुरु। महापुरुषां दी संगत करके केड़ी वस्तु नहीं मिलदी चार पदार्थ जे को मांगे फिर हजूर कहंदे सात जना की सेवा लगी धर्म अर्थ काम मोक्ष। फरीद नूं भी पता लगा सी कि कोई माता है वो दस लैंदी है अज रब तुठा है अज रब रुस गया है चलो मना उस माता कोल चली मैं रब नूं मनाउण वास्ते रब नूं रिझाउण वास्ते कई कर्म कीते हन पर अजे ज़ियारत नहीं होई कि ओ सिंगार मिलन के ताईं।

मैं तो कहना जब तक अवस्था घटे कापियां ला लो रात नू जरूर दो मिनट लाया करो अज किन्या दा दिल तोड़िया है देखो जो कापी ला लो जब तक थले हो आत्म पद नू नहीं पहुंचे रात नू जरूर जोड़ ला रहा करो अज किन्या नाल झूठ बोलिया गया मैं गुरु दी जोरी च बैठा जे गुरु दे भरोसे नाल दावे ना कहना एक दिन ए अवस्था आ जाएगी जे किसे दा एक लफज कढ के दिल तोड़ बैठे हो ना मान लो ते दो मिनट बाद तुहानू फील होना शुरू हो जाएगा ए मैनू नहीं सी कहना चाहिए अज मेरी कापी दे जोड़ वध गया फिर एक उसे वेले शायद गुटका लैके या जवानी जपजी साहब दा पाठ करके अरदास करोगे सतगुरु फलाने दा दिल ए तेज लफज नाल तोड़ बैठा हुण उहनू मिलना औखा है तू मैनू माफी दे दे आखो सतनाम ये गुरमुख दी अवस्था बन जा एक बच्चे दा भी दिल टुट जाए ना उहदे उहनू फिर दो मिनट बाद चानना हो जांदा हो निकल गए लफज चुकया गया हाथ ऐ हो गई कारवाई बोलिया गया झूठ चानना हुंदे ही फिर उहदे कोल इक्को लाज है हुण तेरी बाणी द्वारा तू बख्श दे एक दिन आ जांदा फिर कटदियां जांदियां ते जे कोई विचारदा ही नहीं सोचदा ही नहीं खोजदा ही नहीं इधरले बन्ने फिर गल नहीं बनेगी बाबे ने कहा एक और जगह भी कहा

दर्शन के लिए। हे रविदास, इस आस पे बैठा है कभी ना तेरे दर्शन हो गए। और साथ संगत जिदे मन विच इन्ना वैराग होवे, वो फिर दुनिया दे राग रंगा वाल, तन दौलत वाल किवें

सब कुछ है जो सात वचन नहीं तो फिर कुछ भी। एक कथा केवल सुनन वास्ते नहीं, सिख्या वास्ते के पति पत्नी होन ते उन्हां दा सुभाव और विचार कैसा होवे भगत कबीर साहब बारे। कबीर साहब कहते ने अखबार ते घरवाली कहती है सात वचन। हुण इस नूं सुन के असी अपने मन विच देखिए असी किन्ना कि एक दूसरे का कहना मन दे। पति कहता है ते घरवाली जी करके अगू बोलती सात वचन कह या घरवाली कुछ कहती।

जी करके बुलाओ ते जी करके बोलो। सत बचन रखांगे ते घर विच सुख है। अगर एक कहे ते दूसरा अगू आगड़े, तू कौन होना मैनू कहण वाला, ते कलेश शुरू। ते जे एक दूसरे दा प्यार

वचार है। पर माता पिता और दुखी हो गए। अगे ते पुत्र दानी सी, अब गुणों की दानी निकली, अगो सतनाम सिखवाए। एक दिन माता पिता ने कहा, रविदास तेनु पाले और तेरा ब्याह कर देता। सोचे असी तू कमाई करके सानू खुआएगा, पर तू ते दानी, असी तेनु कमा के नहीं खुआ सकते। इस तरह कर, जो समान चाहिए लै लै ते वखरे हो जा। साडे वालों कमाई कर, साडे वालों दान करी। माता पिता ने वखरे आकर दिता। शाही रस्ते ते अपनी चौकी पा ले, चौपड़ी पा ले, पर अजमान ढाढा दुखी होया। मापिया ने केवल इस करके वखरे कर दिता कि मैं पैसे नहीं कमांदा, ते की दुनिया में जो सारे रिश्ते तन दौलत दे। मन दुखी होया ते अपने माधो दे नाल शब्द द्वारा इस तरह फिर भगत जी वचन करते।

गंगा स्नान करेंगे। भगत जी घर वापस आए, दिन बीतते गए। एक दिन एक महात्मा रविदास जी की चुटी विच आए, अपने सवाल अनुसार जो कुछ बल्ले सी सेवा की। जान लगे वो महात्मा कहते ने, रविदास तू बड़ा गरीब है, तेरे को माया नहीं है, मेरे को एक पारस है, ये पारस तू ले ले। ये पारस जिन्हों भी लाएगा वो चीज सोना बन जाए, सोना बाजार बेच ते सोने मंदिर मकान बना, आए गए की सेवा कर। सत्संग भगत रविदास जवाब की देते उस साधु, कह लगे महात्मा मेरे को इना समा नहीं कि पहला मैं पारस के नाल सोना बनाव, फिर उस सोने नु बाजार बेचन जा, जिन्ना समा मैं सोना बना के बेचना है उन्ना समा मैं हो

हर कोई गुरमुख भी नहीं हो सकता। अब माता जी ने मर्जी कह देने हैं, आओ गुरमुख हो गई। अजकल ते लोग दोहरी जिंदगी जींदे, उत्तों कुछ होर ते बाहरों कुछ होर। उत्तों दिखावा इना के देखण वाला ए कवे कि ए वर्गा कोई गुरमुख है ही, ए दे वर्गा दानी कोई, ए दे वर्गा पुन्नी कोई। ते अंदरों लालसा ऐसी कि जे वस चले ते सारी दुनिया लुट के खा जाए। इथों तक देखे कि लोकी धर्म के नां से भी ठगियां कर दी, थोड़ा जिहा दान पुन कर दिता लोगों नूं दिखाण वास्ते ते बाकी सारा कुछ आप सांभ लिया। वड्डियां वड्डियां उगराहियां भी होंदियां, थोड़ा जिहा लोग लगांदे ने धर्म के नां ते बाकी आप सांभ लैंदे। धार्मिक स्थानां दा भी हाल ते धार्मिक

एहसान ते चले गए। बड़े समय बाद ओही महात्मा फिर आए, भगत की ओही हालत ते कुछ देने रवदास है। मैं तेरे एक पारस दे गया सी, ते भगत जी कहते ने मैनू ते पता नहीं जिथे रख गए सी उथे पिया होगा, आखो सतनाम सिद्ध। वो पारस दरवाजे दे नालों खोलिया, पारस हाथ विच पकड़िया, ते वो महात्मा कौन है? वो महात्मा और कोई नहीं, आप हरि परमात्मा है, आखो सतनाम।

तीर्थ यात्रा का बहाना करके हे राणी चितौड़ तू चली और सीधी बनारस पहुंची और सात संगत किसे पासे नहीं गई सीधी भगत रविदास ने तेरे जा पहुंची। अगे संगत बैठिया ने भगत रविदास हाथ विच खड़ताला ने ते नाले

कहते ने है इंसान तो कादा हंकार करता है कभी अपने बारे सोचे है तू है कि हड्डियां का पिंजरा दुआले मासल बैठे और दुनिया भर का गंध तेरे अंदर और तू अपने आप को समझता है कि मैं पता नहीं की कुछ हो गया। एक गल याद रखना जो आप गदगी बाहर देखते हैं कि बाहरों नहीं आई यह इंसान से की भगत जी कहते हैं दुनिया भर का गंध तेरे अंदर ते तू अपने आप को बड़ा कुछ समझते तेरी सिर्फ इतनी कहानी है हड्डियां का पिंजरा है दुआले तेरे मास लपेटे है ते वेचे

वड्डी कोठी बना, महल बना, किला बना। कोई बच्चा होवे बुढ़ा पावे जवान, सौण वास्ते जगह साढ़े तेना ते चाहिए। कोई बच्चा मरे बुढ़ा पावे जवान मरे, जिथे साड़े आ जांदा है वो जगह भी साढ़े तेना ते होंगी। भगत जी कहते ने जो मर्जी बना लै अखीर तेनू जगह साढ़े तेना ते मिली। आखो सतनाम श्री।

पूज्य मंदिर सोहना घर सुंदर नारी सोहना रूप सोहनी कारवाई इस शब्द को यह ना समझना कि दुनिया तिया पुत्र घर बार छड़ के बह जाइए ने बाणी यह कहती है कि सब कुछ है पर इस सब कुछ ना समझ क्योंकि सब कुछ परमेश्वर का नाम ये चीजा ते कभी भी तेरा साथ छड़ जाने गियां पर परमात्मा वो कभी साथ नहीं छड़ना इन चीजा विच रह के जरा

समय ना ने के शब्द पूरा पड़ी शब्द सुने राणी का अता गुस्सा ते जांदा रे ते फिर राणी ने कहा चल भाई कुछ ब्राह्मण आए ने बनारस तो कहते ने तू चमार नु गुरु बनाए राणी कहन लगी चलो मेरे नाल दरबार आके उन्हां पंडतां नूं कहा जिन्नी चुक सको उन्नी धन दौलत दे आगे सच दसो सच्चा भगत कौन है आए माया वास्ते सन जद माया मिली ते जिहड़े पहला निंदिया करदे सन ओही कहन लग पए भगत रविदास वर्गा ते भगत ही कोई नहीं आखो सतनाम सिंह है माया जी मिल गई खैर गल कोई भी होई असर यह होया कि राणा भी श्रद्धालु बन गए भगत जी ने चितौड़ बुलाया कई दिन सत्संग होता रहा और अज आखिरी दिन बड़ा वड्डा पंडाल लगा राणी का सदा तो फिर कौन ना आवे हजारां लोग पंडाल